तू अपना बिरद पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बां फड़ ले। जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती। जिवें उना दी पैज रखी जिवें उना दी रखिया कीती जिवें उना दी बां फड़ी, हे बाबा जी अज साड़ी भी फड़ लो। साध संगत बोलो श्री वाहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा, अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा बिचारे रो के रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे कर जमदे, ए साडे कर आन जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे, बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखे रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार आखिया सी, जाओ दलिदरी, सुदामा गरीब हो गया दलिदरी हो गया, घरवाली दे कन्नी सरोत पई, एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया ओ सानू भुले नहीं, आखिया की सबूत है, आखिया भुलदा उना नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाह। कहन लगी जे सानू ओ ना भुल दे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे, इतनी गरीबी साडे घर विच ना हुंदी, ता सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच, पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी, नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी, पाग उना दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है, उना दे पुना नू पाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है, ते जिसने गुरु नानक दे घर नू अपना घर जान के सेवा कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालिक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती, एक दिन शामा पईयां, मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैन नहीं, भगवान छट तैयार हो गए, मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा।

हाथ पा के किसी शायदा पक्का मारिया तो झट कुता सुदामा दबकिया रहा। फिर जिस वेले भुख लगी हाथ पाया छोले कड़े ते फका मारिया कड़क कड़क दी आवाज आई। भगवान ने आख्या सुदामिया भई कुछ ता खारे सचो सच दस दे मैं तेरे कोल वंडदा नहीं।

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ए आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जान। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतर जामी है। हर अंतर जामी सब विद जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा है। ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रहे। आखिया इतवार नहीं आया। कह लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्री। सुदामा दलित्री हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आख्या ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जाओ। ता बहाना लगाया भी एडे वड्डे पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई उगों धन भी छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है तो साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चौल जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जाके मिलो। शायद साडी गरीबी कटी जाए साडा दलिद्र निकल जाए। आखण लगी तुसी एडे गरीब ते ओ द्वारका दे राजे। सुदामे ने आख्या भगवान ने ये सब आपो अपनी किस्मत है। किसे नु किस्मत किधर ले जांदी है। मां जनेंदी सत पुत ते भाग ना देंदी वंड बोलिए आपो अपने कर्म लेने। इस करके वो द्वारका दे राजे सदवाए असी दलिद्री अखवाए। आख्या ए दलिद्र दूर करन वास्ते एक बार जरूर जाओ। सुदामे दी तली दे उत्ते ओ चावलां दी पोटली रखी ते सुदामा जा रहे है भगवान कृष्ण दे दर्शनन। आ जरा को ख्याल करो सुदामे वाले।

इसकी निम्रता परी बेनती जिसले सुनी ता जा अंदर पहुंचिया भगवान कृष्ण महाराज दे चरणा विच बेनती कीती भगवन बाहर एक आया वो आखदा जी मैं थोड़ा मित्र हां पर तानू मिलना चाहूं मैं बड़ा हट गया धक्के भी मारे ने आखिया जा पर जांदा नहीं आखदा मैं अपने मित्र नू मिलन वास्ते आया तो भगवान कृष्ण कहन लगे कौन है कितों दा रहन वाला है की शकल सूरत है ता दरबार ने नक्शा खिचे आखिया सीस पगा ना चगा तन पे जन जान अजान बसे कई ग्रामा सिर ते पग कोई तेड़ कपड़ा कोई सीस पगा ना चगा तन पे जन जान अजान बसे कई ग्रामा

किस जात दा है। दरबान ने आखिया भगवान उसके मथे दा तिलक दसदा भी ओ ब्राह्मण है। नहीं पाए पन ही ये आए निशाना, द्वार खड़ा तिज दुर्बलता स्यों देख रहे हो बसदा अबरामा, तुहाडे सोने महल वल अखां लाई बैठा उड़ीक रहे भी किस वेले दर्शन होणगे। ते ज्यों ज्यों ए नक्शा दरबान खिंचदा ते ओ मूर्त भगवान दे सामने

ये कंटक जाल परे पग तोहे, आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए, इन्हें दिन किथे रे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा भर के ले आई, जिसले चरण तोड़ लगे, आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निद रोए, नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो, बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दिते। फिर आखन लगे सुदामे, सुनिया भी तेरा विआह हो गए, हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं, सुखी हन, तुहाडी कृपा है। कहन लगे सुदामिया, जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खाण वास्ते दिता नहीं, मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं, ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी, जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया, कुछ दिता नहीं, चुप रहे। अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलां दी पोटली जिसले कड़ी, आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन, वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने, ते जिसले मारिया फका, ते आखन लगे बड़े मिठे। सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले, भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे, आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद, भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा, ये मेरे भक्त दा प्रसाद। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल

खूनखार शराबी हाथियां नाल लड़न दी समर्था रखन लगे। ए शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत दी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी

तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इसका मतलब कि अकाल पुरख वल्लों मैनू जो हुक्म हो

कि ए तिलक मैं पूंजन नहीं देंगा, मैं जुल्म नहीं होन देंगा, किसे दा धर्म खोन दा किसे नु कोई हक नहीं। ते ओ हाथ नु रोकन वास्ते भावे अपना सीस अपना सिर कटवाना पिया, दिल्ली दे चांदनी चौक विच सिर ता कटवा दिता, पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

धर्म की रक्षा करके विखाई। तो गुरु दसम पातशाह ने धर्म की रक्षा वास्ते, हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते।

गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा है पर गुरमुख सत संगत दी कुखों जन्म लैंदा सत संगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उसनू गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है। जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबो वंडदा है ए गुरमुख दा दान है गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख कोई समासी किसी पासों सुगंधी आ रही सी किसी ने आके पुछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही जिस पासों सुगंधी आ रही सी उसने कहा मेरे पास गुलाब दा फूल है उसने गुलाब दा फूल दिखाया वेखण वाले ने वेख

फरीद जी, क्योंकि फकीर हर रंग विच राजी रहिंदा है, उनू किसे सेजा दी लोड़ नहीं, किसे सुख साधन दी लोड़ नहीं, किसे मैल माड़ियां विच विराजन दी ख्वाहिश नहीं होंदी। फकीर कहिंदे हन कि जिन्हां ते आसमान दा साया है उन्हां नू मैल माड़ियां दी लोड़ ही नहीं। रब दे फकीर कहिंदे हन जिन्हां नू धरती दी गोद प्राप्त है उन्हां नू सेजावां दी लोड़ ही नहीं। फरीद जी खुले मैदान विच आप बैठे हन, प्रभु दा सिमरन कर रहे हन। एक हंकारी पुरुष सफेद पोश कोलो डंगया, आख्या क्यों पखंड बनाई बैठा, मिट्टी विच रुलिया तां रब दी प्राप्ति नहीं होंदी, तू धूड़ विच बैठा, मैल विच बैठा होया। फरीद जी ने नेत्र खोले, आख्या भाई भले पुरशा इस खाक दी निंदिया ना कर, एक खाक बड़ी सेवा करती, क्योंकि जीवदियां पैरां तले मोया ऊपर होए, तो मर जाएगा तेरे पर्दे ढकेगी, इसलिए इस खाक

किनारे सैर करते हुए जा रहे हैं, ते की तकिया नदी किनारे बगला बैठा केल खा रहे है, मच्छी पकड़ता है, चुक के ऊपर सुटता है ते फिर मुंह विच बोच लेता है। केला कर थोड़ा ही समा बीतिया सी के बाज ने आके झपट मारी, मच्छी मुख विच है ते उस समेत बगले नू बाज चुक के लै गया। फरीद जी कहंदे ने है मेरे मन, ए काल रूपी बाज तैनू भी एवें पौ, पदार्थां रूपी विछियां रूपी नदी दे किनारे ते तू बैठा है, खेल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मैनू कौन पुछदा केड़ा पापां दा बदला देना पैंदा। आख्या जदों काल ने झपट मारनी है तां तेरियां केलां, तू जितनियां खुशियां विच रुझिया होया सब इत्थे ही रह जानियां। फरीद जी उच्चारण करदे हन।

कदे सत्संगत विच फेरा नहीं पाया। माया नू नहीं सब कुछ समझी बैठे, ते जदों मौत हो गई, जदों इस सेठ नू अगन भेट करन लगे, क्योंकि करोड़पति सी, ए लंगोट दे नाल लक दे नाल बन के सोने दी जंजीरी रखिया करदा सी, ते जदों अगन भेट करन लगे ते फिर उन्होंने सोने दी जंजीर भी उतार ली। आख्या ए किधर नाल लै जावे, उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए कबीर जी कहंदे कि भाई दुनियावी तन ने तो इथों तक ही साथ देना, नाल केड़ा तन जाएगा, नाल जाएगा सतनाम श्री वाहिगुरु। नाल तो सास ग्रास जपया होया नाम ही तेरी सहायता करेगा। इसलिए कबीर जी कहंदे ना, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 22 मिनट दी होती है। आख्या जे तेरे कोल एक घड़ी भी समा नहीं मिलता तेन जपन में, एक घड़ी भी तू गुरु लई नहीं कढ सकदा, तां अद्धी घड़ी कढ ले। ते जे अद्धी भी घड़ी तू नहीं कढ सकदा, ओदों ही अद्धी कर लै, कुछ तां स्वास सफल कर, जिस वाहिगुरु ने एडी अमोलक मनुष्या दई तेनू बख्शी है, उन्हां स्वासां विचों कुछ गुरु दे लेखे कर दे, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जाए। बड़े बड़े संसार ते आए, महल मारियां किले, बड़े बड़े गढ़ बना के चले गए, नाल नहीं ले जा सके। हजूर कहंदे नू कूड़ा सौदा कर गए, तेनू सच्चे सौदे लई इत्थे भेजा गया। फरीदा कोठे मंडप मारियां, ओ सारेंदे पी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी जाए पे। आखिर गोरां दे विच जाके सौंगे, जिन्होंने बड़े बड़े महल मारियां, बड़े धन कठे कीते सन, बड़े हुक्म चलाए सन।

मनुख बड़े सामान इकट्ठे करदा, बड़िया वस्तुआं संभाल संभाल रखदा है। भाई ये इस उम्र विच आ उस उम्र विच 100 बरस का समान इकट्ठा कर ले, पर पल की खबर नहीं, पता नहीं अगला श्वास आना भी है कि नहीं आना। पर मनुख बहुत कुछ कर ले। फरीद जी कहते हैं भाई ये तो कंधी उत्ते रुखड़ा, ये मनुच्छा जन्म जिस तरह वहदे दरिया के किनारे ते कोई छोटा जिहा बरूटा होवे ते कोई पता लगदा किस वेले पानी दी छल आवे उस बूटे नू रोड़ के लै जाएगी। बस तेरा भी इतना को ही जीवन है, क्यों एडिया पक्कियां बन बैठे हैं। इनी लोइनी देखदियां केती चल गई, तेरे अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए, तैनू अजे भी समझ नहीं आउंदी। तू भी उसे लाइन च खड़ा, पता नहीं कल की दीवारी है भाई। ते फिर इसनू जप जप के मनुच्छा जन्म दी सफलता, साध संगत दी सेवा और सिमरन करना, मन जोड़ना, अमृत वेले उठना। जो भी कोई गुरु, किसे दा भी कोई गुरु है वो मुबारक है। अपने गुरु दे पाए हुए पूर्णिया ते चल के अपना जीवन सफल करे, मनुच्छा जन्म ताई सफल हो सकता है, संसार ते आना ताई सफल है। इस लई फरीद जी कहंदे न फरीदा चार गमाया खंड के चार गमाया सम, आ तू ते जेड़ी गल चेते रखनी सी वो तैनू भोली गई है। तू चार कम तो चेते रख ले, खाना पीना हसना सौना, ते विसर गया है मरना। जे तैनू मरना याद होंदा तो तू अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन कर। तैनू पता होंदा मैं संसार ते किस लई भेजा गया और केड़ा कम कर रहा। इसलिए चार गवाया हंड

कहते हैं अगर तू मेरा प्यारा है जब तेरे नाल मेरा प्यार है तो उस प्यार दे विच कोई कमी रह गई उस प्यार दे नाल ते मेरिया तमाम भुखा कहते हैं वह पूरिया हो गई हैं तू मेरो प्यारो इतना लफ्जी कहना यह सिद्ध करता है कि कोई हस्ती कोई शख्सियत कोई बींग मौजूद है जिसने

तू मेरो प्यार हो तो कैसी भूखा, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, ए मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है, ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, हो रखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

बगीचा है पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा साडे लिए उन्होंने कुछ और आख्या। हुण साहिब सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ वो एक समस्या है एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है महाराज जी उस नूं जानदे हन वह कित्थे है महाराज जी नूं उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हन कहिंदे हन आखां जीवां विसरे मर जाओ कहिंदे हन तू मेरे लालन तू मेरे प्राण तू मेरे प्राण है तू मेरे लालन तू मेरे प्राण तू मेरे साहेब तू मेरे खान तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संगीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमखना जाई रहना ए प्यार तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाव के हा काला जी ए प्यार मेरा मन एक ही प्रेम मांग है मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है ये है प्यार उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनु प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इतना प्यार एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो प्यार ही क्यों मंगते हो कुछ होर ले लो और बहुत कुछ दे सकते हैं की दे सकते हो हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं ए ले लो। महाराज जी आखते हैं हम सुन वाला शब्द है कहते अत्यंत चीजा खिलारियां पई हैं सामने ते अकाल पुरख पूछता है तुहानू की चीज चाहिए है ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रख्या है ते महाराज जी आखते हैं उस वल उंगली करके ओ ऊहा प्रेम प्री कहते ओ प्री का प्रेम ही चाहिए है कनक माणक गज मोतियन लालन कनक यानी सोना माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स कनक माणक गज हाथी कनक माणक गज लालन डायमंड्स कनक माणक गज लालन नह नह नहीं कहते नहीं तीन बारी आख्या है कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए कनक माणक गज मोतियन लालन ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स कुछ नहीं चाहिए की चाहिए है उहा प्रेम प्री सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं राज ना भाग राज ना भागन ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाहिए कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए तो यह है प्रेम सो महाराज जी दे कोल है प्रेम साडे कोल है कुछ भी नहीं असी खाली हाँ साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन दैट्स व्हाट वी है महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बिन आओ सारे आखिए यह साडी अवस्था है यह साडी कंडीशन है यह साडी हालत है साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर साडे कोल रस्मो रिवाज सारे हो सकते हैं साडे कोल आलीशान गुरुद्वारे हो सकते हैं लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं अंदर खाली प्रेम बिन सारे बोलो इस पंक्ति नूं अंदर खाली प्रेम बिन साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है अते महाराज जी आखदे हन जिथे अंदर प्रेम नहीं है कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है जिसके अंदर प्रेम नहीं है ते गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए हुण सवाल पैदा हुंदा है कि प्रेम हाउ टू गेट इट किस तरह प्राप्त करिए ये साडे अपने वस्ती ते गल नहीं असी तो अंदरों पत्थर बने पए साडे अंदर ते कठोरता है साडे अंदर प्रेम नहीं है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,

जवाब है बाणी। संत संगत मिल रहे क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम होंदे हैं, प्रेम रूप होंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बनानी है, मेरे सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं

बिन गुरु प्रेम ना पाई है, कहते गुरु तो बिना जो प्रेम वस्तु है ये नहीं प्राप्त हो सकती। तो सारी दुनिया के जितना भी आख्या जाता है ना कि मैं तेनू प्यार करता हाँ, मैं तेनू प्यार करता हाँ, इत आदि शब्द जो वरते जाते हैं ये सारे ही फेक हैं। कोई किसी नू प्यार नहीं करता, क्योंकि जितनी देर तक वो प्यार अंदर पैदा ही नहीं होया। हाँ, असी किसी ना किसी तो सानू कोई जरूरत पूरी होंदी है, उस जरूरत पूरी होने करके असी उस नू प्यार करते हैं। जो जरूरत पूरी ना हो तो साडा प्यार बदल जाता है, नफरत च बदल जाता है। सो साडा प्यार किसी ना किसी नीड दे उत्ते बेस्ड है, वो नीड पूरी होंदी है तो असी उस नीड नू प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी आखते हैं प्यार एक आत्मक अवस्था है, प्यार एक स्टेट ऑफ माइंड है, प्यार एक आत्मा की एक क्वालिटी है, प्यार एक आत्मा की सुगंधी है, प्यार एक आत्मा का स्वभाव है। कहते ओ गुरु तो बिना प्राप्त नहीं हो सकता, बिन गुर प्रेम ना लभी। अगे आखते हैं गुरमुख सच्ची आशकी, ए लाइन कह के समाप्त कर रहा मैं। गुरमुख सच्ची आशकी, सच्ची आशकी सच्चा प्यार, जित प्रीतम सच्चा पाई है, जिस प्यार दे नाल ओ सच्चे प्रीतम वाहिगुरु नू असी पा सकना है, ते उसने सानू प्यारा लगना है, ते उसका नाम सानू प्राप्त होना है। कहते हैं ओ आशकी जो है गुरमुख सच्ची आशकी, जित प्रीतम सच्चा पाई है, अनदिन रहे आनंद नानक सहज समाई है। कहते जेड़ा प्यार पा के दिन रात ब्लिस के विच रहना है, सहज के विच रहना है। कहते हैं सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सारे इस पंक्ति नु बोलो, सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए, सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सो अज का कीर्तन इत्थे तक पहुंचा है कि सानू जरूरत है उस ही किस्म दी प्यार दी, जिस किस्म दा महाराज जी दा उस नाम वाले दे नाल प्यार है। महाराज जी का उस नाम वाले दे नाल प्यार है, उसके नाम दे नाल प्यार है, क्योंकि जिस नाल प्यार हो उसका नाम प्यारा लगता है, उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है, उसका हर कर्म प्यारा लगता है। तो साड़ी जाचना यह है कि सानू प्यार किमें प्राप्त होवे ताकि सानू भी नाम प्यारा लगे, तो सानू उसकी हर वस्तु प्यारी लगे, उसका हर कर्म प्यारा लगे, वो प्यार सानू किमें मिले। इस तस्वीर दे विच इस पॉइंट ते जाके गुरु महाराज जी गुरु नू विच लैके आ रहे हैं कि विदाउट गुरु दैट लव इज इम्पॉसिबल, कि गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही है जिसनू वो तमाम वजह का पता है कि साडे अंदर प्रेम क्यों नहीं है, अते गुरु ही है जिसनू पता है कि इन्हां दे अंदर प्रेम किस तरह पैदा करना है, जहर नू किस तरह निकालना है, पत्थरां नू रॉक्स नू किस तरह निकालना है। क्योंकि बाणी आखदी साडे अंदर ते पांच बड़े वड्डे वड्डे भूत रहिंदे हन, पांच भूत सबल है देही, इस देही च पांच बहुत शक्तिशाली भूत रहिंदे हन, उत्थे प्यार किथे होएगा। कोई उन्हां भूतां नू बाहर निकाले, कोई उन्हां पत्थरां नू बाल निकाले, कोई जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल नू बाहर निकाले, पहलां उस नू प्यार दे काबल ते बनाए। प्यार इतनी अमलीक वस्तु है, गुरु महाराज जी कहते हैं वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। अंदरली पहला सफाई, फिर गुरु प्रेम का ही सागर है, ते वो प्रेम साडे अंदर पैदा कर सकेगा। जब साडे अंदर प्रेम पैदा करेगा, जिथे नाम वाला है उस दे नाल मिलाएगा, उस मिलनी च उस नाम वाले दे नाल प्यार होएगा, ते उसका नाम प्राप्त होएगा, ते उस दे नाम दे नाल भी साडा प्यार पाएगा। बाकी दी विचारां कल नू इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। आओ इस पंक्ति नू गा के जो कुछ कहा गया है इस नू याद रखण दी कोशिश करनी, ते कल नू समय से दर्शन देने। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, एक प्यार दी एक मॉडल है, एक प्यार दी इंतहा है। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है तो मैं जीना हाँ, वरना कहते मेरे तो जीना भी मैनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

क्योंकि अरदास एक ऐसी शक्ति मालिक ने बख्शिश कीती है, कोई भी कार्य आरंभ करिए तामी अरदास, कार्य समाप्त होवे तामी अरदास, दुख विच अरदास, सुख विच अरदास। अरदास एक साडे जीवन दा पहला अंग है। हुण सतगुरु सानू समझांदे ने अरदास करनी किवें। अरदास आरंभ हुंदी है, सब तो पहले असी की पढ़ने हैं,

अरदास उस अगे करनी है जिसने तेनू पैदा किया। हुण अरदास की विधि दस देनी, मर्यादा दस देनी कि इस तरह अरदास करिए। हुण अरदास जो आरंभ हुंदी है असी इस पौड़ी का जाप करनी, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख खनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवन। कई इस पढ़ते ने ऊंचे से ऊंचा भगवन, नहीं भाई तुक है ऊंचे ते ऊंचा भगवन। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सुवाग्याकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। इथे भी एक मिस्टेक होती, तुमरी गत मित तुमरी जानी, नहीं भाई तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। लो भी अरदास आरंभ होई है, सारे खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, अरदास होने लगी। जो खड़े हो जानी है उस तो बाद अरदास दोहराण लगी है।

0: क्योंकि अरदास खलो के होंगी। अरदास एक जोदड़ी एक मिनत तरला है ते वो खड़िया होके ही कीता जा सकता है। हुण जिवें किसे अदालत विच कोई केस पेश होवे जज सामने उच्ची कुर्सी ते बैठा हुंदा है केस पेश करन वाला वकील खड़ा होके करदा वो खड़ा होके केस नूं सुनांदा है कि ए केस किस प्रकार है। इसे तरह भाई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हन उन्हां अगे असी अपनी अर्ज सुनानी है ते सानू खड़िया होके सुनानी पए। आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सावधान हो गए खड़े हो गए। तीसरी विधि मेरे खड़े ही नहीं होना की करना है।
1: कोई कर जोड़ करू अरदास तुद भावे ताने रास।
0: सावधान खड़े हो गए फिर साहब कहने दो एक कर कहते ने हथां दोवें हाथ जोड़ लैनी दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावीता आनी रास। हे मेरे मालिक मैं जो अरदास कर रहा जे तेनू भा जाए तेनू चंगी लगे ते मेरी अरदास मंजूर हो सकती। खड़े हो गए सावधान हुण दोवें हाथ जोड़ लै उस मालिक नू अरदास सुनाण वास्ते। साहब कहिंदे ने उस तो बाद की होना चाहिए
1: है हजूर हाजर अरदास।
0: सब तो जिहड़ी अहमियत रखने वाली गल है ना वो ये है कि साडे मन नू यकीन है भरोसा है अकीदा है फेत है कि ऐसा विश्वास है कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहे हां वो बैठा सुन रहे है। जे साडे मन नू ही यकीन नहीं ते अरदास सुना किनू रहे हैं। ए यकीन होना बड़ा जरूरी है। है हजूर हाजर अरदास ओ भाई ओ ते हाजर है हजूर तेरे सन्मुख विराजमान है तू आप हाजर होके अरदास कर। क्योंकि आप नू याद होवेगा गुरु नानक गए हाजरा दी नमाज विच हाजर नहीं होए कि सत संगत वो गए हाजरा दी अरदास विच हाजर होणगे बिल्कुल नहीं। मन नू यकीन होवे है हजूर वो है हां हाजर अरदास मैं हाजर होके अरदास करा। क्योंकि बहुतियां दा शिकवा गिला है शिकायत है कि साडी अरदास मंजूर नहीं हुई बड़े चिरां तों अरदास कर रहे हैं अरदास मंजूर नहीं हुई। वह बोलिया यह भी तो हो सकता तेनू अरदास सुनानी नहीं आई तेनू अरदास करनी नहीं आई। एक शायर ने बड़े कमाल की गल कही तो कहना खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है बस यही तो मुश्किल है ये बड़ी मुश्किल से होती है। गल तो यह है कि हुंदी बड़ी मुश्किल है जब तक सावधान ना होवे खड़ा ना होवे हाथ ना जोड़े मन नू यकीन ना होवे कि जिहदे अगे मैं अरदास कर रहे हां वह बैठा सुन रहा है अरदास सुना किनू रहे। इसलिए भाई पहले अपने मन

अर्प धार। कंडीशन है, शर्त है, छाड़ सियानप सग। जब तक तू अपने मन की सियानप नहीं ना छड़दा, अरदास मंजूर नहीं। आप अपनी सियानप वरतनी, अपनी चतराई गुरु नूं विखानी, हुण उत्थे अरदास किथे मंजूर हो जाए। इथे ते भोले पाओ सुनिया जाना। साहब कहने छाड़ सियानप सगल मन तन अर्प धर। अपना मन ते तन अर्पण करके अरदास कर, वेख किवें मंजूर हुंदी। हुण इही गल्लां औखियां कि असी मन अर्पण करने, कि असी तन अर्पण करने, जो साडी अरदास मंजूर हो जाए। अरदास करदियां करदियां साडे मन च ख्याल आ जांदा है, बाबा जे सुन लवें ते बड़ी चंगी गल है, ना सुने ते किते होर जा सुनावांगा, किसी होर नूं जाके आखांगा। जदों मन ही दुचित्ता है, मन अंदर दो पा हन, उह किते अरदास मंजूर हो सकदी नहीं। भाई एक मन एक चित दे नाल आके अरदास करिए, उह सियानपां नूं छड के चतुराईयां नूं छड के मालक नूं आखीए, छाड़ सियानप सगल मन तन अर्प धर। अपना भाई मन तन अर्पण करना, यही गल सब तो औखी। जे गुरु दी गल मन लिए ते गल बन जावे। हुण सतगुरु कहिंदे ने मन ते तन अर्पण कर दे, हुण इह किवें करिए? तीन गल्लां सतगुरु ने आखी, तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाई। तन ते मन ते तन गुरु दे अर्पण कर दे, तेरी अरदास मंजूर हो जाएगी। मनुख की कर दे, तन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, पर कब्जा मेरा, कब्जा नहीं छड़ दे। ओनू अपने वस विच ही रखना चाहुंदा है। सतगुरु कहिंदे ने नहीं, यह अर्पण करिए ते गल बनेगी। यह ख्याल बड़ा सुंदर चेते आया। तन मन ते तन तीन गल्लां ने। हुण कहिंदे ने तन अर्पण कर दईए, मन अर्पण कर दईए, तन अर्पण कर दईए, गल बन जाएगी। ख्याल करियो जी, आलसी कदी तन अर्पण नहीं कर सकता। आलसी बंदा कदी तन अर्पण नहीं कर सकता, ते हंकारी बंदा कदी मन अर्पण नहीं कर सकता, ते शूम बंदा कदी तन अर्पण नहीं कर सकता। तिने गल्लां बड़े कमाल दियां ने। आलसी तन नहीं अर्पण कर सकता, हंकारी मन नहीं अर्पण कर सकता, शूम तन नहीं अर्पण कर सकता। पर साहब जी, जे ऐसा हो जाए, तन भी दे दिता जाए, मन भी दे दिता जाए, धन भी दे दिता जाए, गल बन जाएगी। साहब कहते नहीं, हुक्म मनिए भाई। जब तक तू हुक्म नहीं ना मनता, तद तक गल नहीं बननी। हुण मालक का हुक्म की है? जिस आगे अरदास, जिन उपाया अरदास ओदे अगे करनी है, जिन्हें तेन पैदा किया है। सतगुर अपना सेव सब फल पाया, अपने सतगुरु नूं सेव ओदी आराधना कर, सारे फल दी प्राप्ति तेन हो जाएगी। जे गुरु दा हुक्म

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की, फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नू क्यों ना मन करे। कई कहते ने अरदास की, पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हन। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए, पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवां दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ दी पवित्र धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दिती। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नु जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की, सरसा नदी पार किया, गुरु साहबान का सारा वही इथे आके विछड़ गया। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालीक दे करीब सिख एक पासे, तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी, इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है। ठोकर लगी, थले डिग पई। सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर, ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना है, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान, मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद किया गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली ने। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर, तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गड़ी विच मारिया गया, हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम उठ के खलोई, गरज के कहन लगी, ओ दुष्टा, परा हो जा, ओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन उस कैदखाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया,
हिल जुल नहीं सी सकदा। फिर इसने बेनती की बसंत कौर मेनू बख्श दे, मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया, बसंत कौर दे पैरां ते मथा टेकया, एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जा तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास ए है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इस तरह सहायता करनगे।